नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार, जिन नाम आधार।

FM band 102.7 MHz ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਦਨਾ। 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचने पर निघा स्वागत किया गया। केंद्र सरकार ने उच्च अल्कोहल मात्रा वाली दवाइयों के नियमों को होर सख्त करने लिए कानून में सोध की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा करने लई मिशन संचालन समूह की तीजी मीटिंग की प्रधानगी की। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर रूट से स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच न लागू करने 2006 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में वक् वक् थावां ते बूटे ला के वन महोत्सव 2026 की शुरुआत की है। पंजाब में वोटर सूचियों की विशेष तीव्र

बिल्कुल जी, आज मौसम सच्ची मुच्ची विच थोड़ा बेईमान हो गया ना। हल्की जी बारिश की थी और नाल दे नाल ह्यूमिडिटी का जड़ा एक सिलसिला जड़ा है ना वह शुरू हो गया। तो फिर मैं क्या जी सानू पता ही नहीं लगा है ना। और ये पता किवें लगेगा कि जदों ये उदों पता लगेगा ना कि जदों असीं बाहर निकलांगे तो पता लगेगा कि गली थोड़ी जी गिली है और रोड के उत्ते हल्की हल्की बूंदाबांदी ने ना थोड़ा जहा माहौल जड़ा है ना इदा का बना दिता है कि हुमस हुमस जी फील हो रही है। चलो जी ये प्यारा जहा सिलसिला जोड़ा आ असं शुरू कर दें और प्रोग्राम जोड़ा आ गुड मॉर्निंग जलंधर लैके हाजिर है थोड़ी अपनी दोस्त नशा। और अज के उस सिलसिले के मेरे नाल जुड़ चुके हैं 103.6 MHz और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप के स्रोते भी जिन्होंने उन्हें ट्यून किया उन्होंने दस दिन कि नशा बिल्कुल थोड़े नाल है और तुम मेरे नाल रहना है जी गुड मॉर्निंग जलंधर के इस सिलसिले के। और मुलाकात भी होएगी, गल्लां भी होणगियां, बातें भी होणगियां, जानकारी भी होएगी और नाल दे नाल ना थोड़ा जहा हासा मखाण भी कर लेंगे है ना। अज जो तो मैं आई ना तो अज का मौसम थोड़ा सच्ची मुची च बेईमान सीगा है ना, इस करके मैं कहा चलो दोस्तों के नाल भी इस गल जरूर शेयर कर लें जी। मानसून जिहड़ा है ना ऑन द वे आ और कभी मीह होएगा तो कदे बहुत ज़्यादा मीह होएगा तो कदे थोड़ा जहा मीह पै के सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सो ये सारिया चीज़ा ये सारिया गल्ला जिहड़ियां अज के सिलसिले में रहनगियां, लेकिन तुम मेरे नाल रहोगे तो असं इनफोटेनमेंट है खजा

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक आकाशवाणी दीक्षा 2.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी अपनी दोस्त नशा दे नाल और प्रोग्राम जुड़ाया है, चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दे विच जे असीं गल्लां करिए तां ट्रैफिक रूल्स जिहड़े आ जरूर फॉलो करो, घर तों निकलण तों पहलां जिहड़ा आ अपना हैलमेट लैणा ना भुल्लो और नाल दे नाल रेनकोट भी जिहड़ा है ना अजकल अपने टू व्हीलर दे विच जरूर कैरी करके रखो, क्योंकि किथे मींह पै जांदा है और इस रेनकोट दी जरूरत पै सकदी है। और इस मौसम दे विच अपनी कन्विंस जिहड़ी है जिथे भी तुसी खड़ी करदे हो ना उत्थे इस चीज़ दा जरूर ध्यान रखो कि इस इदां दी जगह ते उत्थे उसनू ना खड़े करो जिथे कोई कीड़े मकौड़े जिहड़े आ आउण दा ज़्यादा डर होवे। सो इन्हां सोहणियां छोटियां गल्लां दा ध्यान जिहड़ा है तुसी जरूर रखना है। प्रोग्राम दे विच इदां दी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है मैं इस करके दे रही हाँ, याद करवा रही हाँ कि कुछ चीज़ां जिहड़ियां अपने नाल जरूर जरूर समेट के रखो। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर केंद्र है। 7:03 हो रहे ने, वेला हुण जा रहा है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 दी हाईलाइट्स दे नाल जुड़न दा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक का कनेक्शन है और एक कनेक्शन वाकई विच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बीच आप गलबात का सिलसिला जो है कॉन्टीन्यू करने आ प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जलंधर और इस सिलसिले के बीच मेरे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी स्रोते और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं वो मेरे नाल जुड़े हुए ने और प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग न्यू गुड करन वाला। हाँ जी गुड मॉर्निंग जलंधर, जिते हर सवेर होंगी है जानकारी प्रेरणा और मुस्कराहट दे नाल भरपूर। 11 जुलाई की गल करे सी, 11 जुलाई यानी कि अज असी विश्व जनसंख्या दिवस जिहड़ा आ वह भी मनाने। जदों भी जनसंख्या की गल होंदी है तो असी अक्सर कहने आबादी बहुत वध गई, आबादी बहुत वध गई, पर की कदे सोचा है कि असल चुनौतियां सिर्फ आबादी नहीं है सगो हर एक इंसान तक बराबर दे मौकियां नू पहुंचाउण दी है। इस साल का संदेश है संतुलित भविख लई जनसंख्या स्रोत अते मनुखी अधिकार, भाव हर बच्चे नू चंगी सिक्ख्या मिले, हर परिवार नू सेहत सेवावां मिलन, हर घर तक साफ पानी पहुंचे अते हर व्यक्ति नू इज्जत दे नाल जीण दा मौका मिले। सोचो जे असीं अज ही पानी दी इक इक बूंद दी कदर करिए, बिजली फजूल खपत रोकीए, धियां दी पढ़ाई तों पहल दईए ते वातावरण दी संभाल करिए तां असीं आउण वालियां पीढ़ियां लई इक बेहतर दुनिया छड्ड सकने आ। याद रखो दोस्तों, वड्डी आबादी कमज़ोर नहीं बनती, वड्डी आबादी जिहड़ी हुंदी है वह कमज़ोर नहीं बनती जे वह पीढ़ी लिखी सेहतमंद अते हुनरमंद होवे। इस लई लोड़ है जागरूकता दी, जिम्मेवारी दी अते मिलके अगे वधन दी। ते आओ अज इस विश्व जनसंख्या दिवस ते एक छोटा जा प्रण करिए कि स्रोत दी संभाल करांगे, सही जानकारी फैलावांगे, लिंग समानता नू अपनावांगे अते एक जिम्मेवार नागरिक जिहड़े आ ओह बन के दिखावांगे। क्योंकि दोस्तों भविख गिणती नाल नहीं सोच दे नाल बदलता है, इसलिए आज विश्व जनसंख्या दिवस के उत्ते यही कहना चाहवांगी कि अपनी जिन्नियां भी जिम्मेवारियां साडियां बनिया हुई ने उन्हों बाखूबी बहुत वधिया तरीके दे नाल निभाउणा साडा फर्ज बनता है। मुस्कुराते रहो, जागरूक रहो, दिल से दिल तक आकाशवाणी दी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: करती है बहुत ज्यादा हमारे आसपास सराउंडिंग में।
1: जी
0: तो जहाँ पे ग्रो करती है तो वहां पे कुछ तुलसी के पत्ते लेके उसको हम चाय में डाल दें और उसको अब फ्लेवर भी आएगा, स्वाद भी आएगा, इम्यूनिटी बूस्टर भी बहुत बढ़िया है।
1: जी
0: दूसरा है, अगर बढ़िया फ्रेश अदरक मिले, अदरक तो हम डालते ही हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी
0: तीसरा है, एक मार्केट में फार्मुलेशन त्रिकटु आती है, बहुत अच्छी फार्मुलेशन है, तो अगर हम चाय बना रहे हैं कभी कभी इस्तेमाल करना चाहें तो एक चुटकी थोड़ा सा उसमें हम चाय में डाल सकते हैं। उसमें भी शुंठी पिपली मरीची है तो बढ़िया फ्लेवर भी आ जाएगा और अच्छा इम्यूनिटी इनहेंसर भी है।
1: जी, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास हमारे किचन में ही बहुत सारा ऐसा सामान है
0: हाँ,
1: जिसे
0: किचन
1: हम।
0: में ही आपके बहुत सारी चीजें हैं।
1: जी सर, मानसून के इस मौसम में कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है?
0: देखिए, मानसून में अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से कहूँ तो सुपाच्य भोजन, जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, हल्का खाना खाना चाहिए।
1: जी
0: दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि खाना बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए।
1: और
0: जब
1: सर
0: भी खाएं तो ताजा खाना खाएं, क्योंकि यहाँ माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिलता है।
1: जी
0: तो कुछ भी बनाएं, मतलब ताजा बनाएं और हल्का खाना खाएं, ज्यादा हैवी खाना ना खाएं। तो
1: और
0: जो भी है,
1: जी
0: फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइट फूड जो भी है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दाल सब्जी, सब कुछ खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, बट ताजा खाएं, कोशिश करें।
1: जी सर, सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज भी करना चाहिए कि इस मौसम में नहीं खानी चाहिए?
0: अब ऐसा तो नहीं खाने जैसा तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ चीजें नहीं खाएं, ये कह सकते हो कि हैवी खाना नहीं खाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि टाइमली खाना खाएं, मीन्स रात में ज्यादा लेट नाइट ना खाएं, हैवी खाना अवॉइड करें। मतलब अब हर एक का अपना चॉइस होता है तो लोग उसमें खाते ही हैं, लेकिन अवॉइड करें ज्यादा अच्छा है हैवी फूड्स।
1: जी सर, आप एक चीज़ और बताइए कि इस मौसम में पेट बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है और ऐसे में हमारा जैसे बरसात होती है तो चटपटा खाने को जैसे बहुत सारे लोगों का दिल कहता है, क्या इस मौसम में बाहर का खाना या स्ट्रीट फूड खाना सुरक्षित है? अगर नहीं है तो क्यों?
0: स्ट्रीट फूड खाना मानसून में सुरक्षित तो नहीं कहेंगे हम,
1: जी
0: क्योंकि देखिए मानसून में ह्यूमिड होता है और ये जो टेम्परेचर रेंज है अपना, इसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है।
1: जी
0: तो अगर आपको लगता है कहीं बहुत हाइजेनिक कंडीशन में कुछ चीज बना है, बहुत साफ सफाई है, तो आप ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, बट अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है।
1: जी यानी कि घर का बना हुआ ताज़ा भोजन ही मानसून में हमारी
0: हाँ
1: सेहत को
0: बिल्कुल,
1: तंदुरुस्त बना के रख सकता है
0: हाँ,
1: सर।
0: मतलब कि स्ट्रीट फूड में भी आप देख लीजिए, आपको अगर लगता है कि बहुत साफ सफाई मेंटेन की गई हो, बिल्कुल हाइजेनिक, तो ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, वो देखना पड़ेगा कितनी साफ सफाई मेंटेन की गई, ताजा है कि नहीं है।
1: सर, बारिश के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, अगर ह्यूमिड ज्यादा है, वेदर गर्मी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे डिहाइड्रेशन, पसीना बहुत निकलता है, शरीर से पानी की मात्रा निकलती है।
1: जी।
0: तो अपने आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, कोई भी हो, मतलब कि अगर ह्यूमिड है, बाहर है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो पानी की मात्रा, पानी, ताजा पानी, साफ पानी पीते रहें और कोशिश करें कि जो पानी हो, अगर घर में आजकल जनरली फिल्टर लोग लगवाते हैं तो
1: जी
0: मतलब फिल्टर्ड पानी ही पिए। और आजकल के सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी वाली बीमारियों से ही होता है, दूसरा मच्छरों वाली बीमारियां हैं आजकल,
1: जी। सर
0: तो
1: मतलब कि जो
0: मच्छरों,
1: दूषित पानी होता है जिसे हम कह सकते हैं कि पानी जो गंदा हो जाता है या जिसको पीने लायक नहीं कह सकते, उसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं उसके बढ़ने की सावधानी, जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जैसे अभी आपने पानी की बात की, जिनके पास फिल्टर
0: हाँ,
1: नहीं है या फिर जो नहीं पीते फिल्टर का पानी, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए सर?
0: उसके लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप पानी को पहले बॉईल कर लें, फिर ठंडा कर लें,
1: ओके
0: पानी
1: और
0: को बॉईल कर लें और ठंडा कर लें, उसको छान लें।
1: जी और सर उस
0: जिसके पास
1: पानी,
0: फिल्टर नहीं है, कोई भी साधन नहीं, तो उबला पानी गर्म करके ठंडा कर लें,
1: जी
0: उबाल लें।
1: यानी कि उस पानी में फिर आपको वो पूरे पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे और साथ साथ में
0: हाँ,
1: जो दूषित पानी
0: वैसे
1: है।
0: बरसात में सबसे बेहतर तरीका यही है कि गर्म पानी ही पिए, सबके लिए सेफ रहता है वो।
1: जी सर, आयुर्वेद के अनुसार कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके, बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सके?
0: देखिए आयुर्वेद के हिसाब से तो मानसून में जैसे कि यही चीजें जो मैंने बताई हैं

0: अगर मैं समराइज करूंगा तो यही चीजें करूंगा
1: जी
0: कि स्किन से रिलेटेड जैसे कि प्रॉब्लम है, समस्या है, मतलब समस्या नहीं है, अगर हम जैसे कि बाहर से बारिश से भीग के आए हैं
1: जी जी
0: तो अपने आप को तुरंत हम नहा लें और कोशिश करें कि हल्का सा कुछ डिसइंफेक्टेंट वगैरह डाल लें पानी में, एक आध दो ड्रॉप जो डालना है। जैसे गांव में तो सबसे अच्छा है कि नीम आसपास अगर सराउंडिंग में है, थोड़ा सा बॉईल करके हम नीम का पानी मिला लें,
1: जी
0: सस्ती और बेस्ट रेमेडी है वो स्किन के लिए।
1: से और कौन
0: दूसरा है सुपाच्य भोजन, मीन्स कि इजिली डाइजेस्टेबल खाना खाएं। तीसरा है कि कोशिश करें कि बाहर का खाना जो हैवी फूड है उसको खाने से बचें। बाकी तो यही है कि जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ताजे खाने, यही सब खाएं।
1: जी सर, मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ये बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं।
0: देखिए, इसका तो सबसे सिंपल उपाय ये है कि सबसे पहले सावधानी तो यही है कि जो अपने आसपास के सराउंडिंग में, डेंगू का तो यही कि आप कूलर वगैरह का भी प्रॉपर चेक लगा के रखें,
1: जी
0: साफ पानी में भी ग्रो कर जाता है तो पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, मच्छरों को से बचाव को मॉस्किटो नेट्स लगाएं घर पे, मच्छर को एंट्री ही ना होने दें अपने वॉल, जो भी आपके दरवाजे खिड़की में जालियां लगवाएं, या नहीं है तो जो भी प्रिकॉशंस कर सकते हैं करें।
1: जी
0: बाकी सवेरे शाम या जो भी है फुल स्लीप के कपड़े पहने, तो उसका उपाय तो बचाव ही है,
1: जी
0: साफ सफाई और बचाव।
1: जी सर, अगर कोई बारिश में भीग जाता है और तुरंत उसको क्या करना चाहिए कि वो बीमार ना हो?
0: मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बारिश में भीग जाते लोग भीगते हैं तो मतलब तो बस यही है कि थोड़ा सा अपने आप को टाइमली नहा धो के सुखा लें।
1: यानी कि बारिश में इस भीगने का जो मज़ा हम ले रहे होते हैं उसमें
0: हाँ
1: बीमार ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा ना करें कि हम बारिश के पानी से ही बीमार हो जाएं, है ना सर?
0: हाँ मिस ऐसा देखिए, बारिश में भीगते नहीं, उसका भी अपना कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लोग भीगते ही हैं, बस
1: जी
0: ये कि
1: जी
0: ओवर कोशिश नहीं होनी चाहिए।
1: जी सर,
0: तो
1: क्या इस मानसून के मौसम में, है ना, इस मानसून के दौरान योग, व्यायाम और अच्छी नींद सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है?
0: देखिए, योग व्यायाम तो मानसून ही नहीं, वो सारे सीजन के लिए ही जरूरी है।
1: जी जी
0: कोई भी सीजन हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो अगर आप रेगुलर अपने लिए 15 मिनट थोड़ा बहुत भी कुछ योगा आसन प्राणायाम के लिए दे रहे हैं तो वो लाइफ के लिए एक अच्छी चीज है।
1: जी यानी कि थोड़ा सा
0: तो योग,
1: समय जो है योग के लिए निकालना ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ
0: हाँ
1: रह
0: बिल्कुल,
1: सकें।
0: मुझे लगता है कि हर आदमी 15 से 20 मिनट समय अपने लिए निकाल सकता है,
1: सर
0: वो
1: इस
0: तो हर
1: जी सर इस
0: सीजन के
1: मौसम
0: लिए
1: में
0: बेनिफिट है।
1: जी सर इस मौसम में सबसे ज़्यादा अपसेट होता है पेट, जैसे आपने पहले भी बताया कि
0: जी जी
1: एक स्वस्थ भोजन अगर हम करते हैं तो हमारा पेट जो है वो अपसेट नहीं होगा, लेकिन किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके हम एक अपने इस पेट से संबंधी प्रॉब्लम से बचाव कर सकते हैं?
0: देखिए, किचन में हमारे जो आपके ये जीरा है, अजवाइन है, ठीक है, धनिया है, ये बहुत अच्छे कार्बिनेटिव्स हैं,
1: जी
0: सौंफ है जैसे, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं,
1: जी
0: ठीक है। काला नमक है जैसे, तो कुछ लोग घर पे देसी इनसे पाचक भी बनाते हैं, वो भी बना के रख सकते हैं,
1: जी
0: मार्केट में भी आते हैं। तो जितने भी आपके ये मसाले हैं, जीरा है, काला जीरा, सौंफ, ये सब अच्छे कार्बिनेटिव हैं, अच्छे डाइजेशन में काम करते हैं सब।
1: जी सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स जो मानसून के मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसी 5 या 6 सुझाव, 3-4 ही बता दीजिए, कुछ ऐसे सुझाव बता दीजिए ताकि उनको लगे कि हम मानसून का मज़ा भी लें और बीमार ना हों।
0: बिल्कुल, देखिए मानसून का मजा लेना चाहिए, बिल्कुल ये प्राकृतिक चीजें हैं।
1: जी
0: तो उसके साथ ये है कुछ चीज, जैसे मैंने जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ तो उनसे ही सुझाव निकल के आएंगे।
1: जी
0: देखिए, अगर हम कहीं बारिश में भीग जा रहे हैं, लगातार भीग जा रहे हैं, तो एक बचाव के हिसाब से आप अपने घर पे आके स्नान करें, नहाए और अपने आप को ड्राई कर लें
1: जी
0: मानसून का मजा लेने के बाद, ठीक है।
1: जी
0: दूसरा है कि कोशिश करें कि पानी में ध्यान दें, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें, कहीं भी
1: जी
0: बाहर जैसे जाते हैं हम कुछ भी, तो कोशिश करें पानी साफ होना चाहिए। तीसरा है खाने खाने पीने का टाइमिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा डाइजेशन अग्नि थोड़ा लो हो जाती है, तो रात में खाना टाइमली खा ले, ज्यादा लेट ना खाए मतलब।
1: जी
0: और बाकी वही सारी चीजें हैं अपने आप

0: को अगर पसीना ज्यादा निकल रहा है, कहीं बाहर है, ह्यूमिड ज्यादा है, तो पानी लेते रहें प्रॉपर टाइम से
1: जी।
0: और स्किन अच्छी रखनी है तो थोड़ा सा, अगर मैंने कहीं अवेलेबिलिटी है, नीम बहुत हमारी लाभकारी होती है, तो नीम के पत्ती उबाल के उसका पानी मिला के नहाए तो बहुत अच्छा होगा
1: जी। सर आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आज हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर में शेयर की है। उम्मीद करती हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं इस समय आपको सुन रहे हैं, आपकी दी गई इस जानकारी को ज़रूर अमल में लाएंगे ताकि वो मानसून का मज़ा भी ले सकें और स्वस्थ भी रह सकें।
0: जी
1: सर, डॉक्टर सर प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, इस वक्त सी साढ़े नाल डॉक्टर सौरभ जिन्होंने मानसून दे इस मौसम के उत्ते बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि असी अपने आप नू किवें स्वस्थ रख सकते हैं। बारिश का असली मज़ा उदों ही है जदों असी सेहत नू तंदुरुस्त बनाउण दे बारे, सेहत का ख्याल रखण दे लई नाल जुड़दे हैं। इस लई उन्होंने दस्या है कि स्वस्थ भोजन करना बहुत जरूरी है, साफ पानी पीना जरूरी है, व्यक्तिगत जिहड़ी एक स्वच्छता जिहड़ी हुंदी है उहदे उत्ते भी नज़र मारना जरूरी है। इस लई इस चीज़ नू नज़र अंदाज ना करो। इस ही ब्यूटीफुल मैसेज दे नाल निशा थोड़े एक तो की कह रही है कि अगले सैगमेंट वाल चल रहे हैं और अगली गलबात करांगे। तुसी बने रहो इसी तरह मेरे नाल 102.7 मेगाहर्ट्स, 103.9 मेगाहर्ट्स अमृतसर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और बारिश के मौसम का आनंद सुरक्षित तरीके से लिए। जी हाँ।

ना ना, इतने कुछ नहीं है थे, जो भी है वो हाँ हाँ ही है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जलंधर और इस खूबसूरत सफर दिवश कौन है थोड़े नाल, कौन है गेस गेस गेस गेस जिन्होंने हमने ट्यून किया है और उन्होंने दस दिन अजी मैं हाँ थोड़े नाल थोड़ी अपनी दोस्त ने शादल सो दिल तक। सो प्रोग्राम के गलों बातों का सिलसिला जो है अगे लेके जाने, कहते हैं कि उम्र जी है कहते हैं कि उम्र नहीं हौसले इतिहास लिखे, ते अज गल सच कर दिखाई है भारत के 18 साल के टेनिस स्टार अर्णव पापकर ने। बिल्कुल जी, अर्णव पापकर ने ये मिसाल कायम कर दी 36 साल बाद किसी भारतीय खिडारी ने विंबलडन जूनियर बॉयज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल दे विच अपनी जगह जी है वह बनाई है। अर्णव ने जापान के रियो तबाता सिर्फ 52 मिनटों के 6-2, 6-1 नाल हराया ते हुण पूरे देश दीआं उम्मीदां उन्हां दे नाल जुड़ गईआं ने। कह सकते हैं कि लेंडर पेस तो बाद आया ये नवा चैप्टर सानू सिखाता है कि वड्डे सुपने देखो, मेहनत करो, इतिहास अपने आप बन जाता है। बहुत बहुत मुबारक अर्णव नू और तुहाडे हर शॉट दे नाल भारत दा तिरंगा होर भी उच्चा लहराए। यही दुआ करने हैं जी कि तुसी होर भी अगे वधो और अगे जाके अपने मुल्क अपने भारत का नाम जुड़ाया और रोशन करते रहो। तो 36 साल का इतिहास तोड़न वाले अर्णव की गल कर रहे थे कि अर्णव ने एक खूबसूरत इतिहास रच के भारतीयों का नाम जुड़ाया और रोशन किया है। इनफॉर्मेशन जी है पता कितों मिलनी है, साढ़े नाल रहोंगे तो ही मिलनी है। हाँ जी बिल्कुल जी, साढ़े नाल रहोंगे, हंस के रहोंगे तो ही तो फिर यहोजी इनफॉर्मेशन जी है साढ़े नाल रह रह के मिलती है। सो दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है गुड गुड मॉर्निंग जलंधर। गुड मॉर्निंग जलंधर में टाइम की कहता है कि पहला आप माड़ा जहा गाँव सुन लीए, माड़ा जहा नहीं सुनाऊँगी, पूरा ही सुनावगी, बस तुम मेरे नाल बने रहो।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वख-वख प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मांग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: इंसानियत जड़ी है ना, बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसानों में तलाश करें। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज राम स्वरूप अरोड़ा चौंग चलिया सुल्तानपुर लोधी को पहुंचे। अगला मैसेज भी बहुत बढ़िया है और अगला मैसेज भी जिहड़ा प्रोग्राम दे विच मैं बिल्कुल नाल दे नाल शामिल करांगी, लेकिन जे तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडा भी मैसेज जिहड़ा है वो प्रोग्राम दे विच शामिल किया जाए तो उहदे लई तुहानू करना पएगा ही कम करना ये पएगा कि फोन चुको, अपना फोन चुक के 9855101027 इस नंबर नू अपने फोन च सेव कर लो और नाल दे नाल फटाफट तो कर दिओ मैसेज इस नंबर दे विच। दिल तो दिल तक दिल अपना पंजाबी दा सिलसिला नशा तुहाडे नाल है, तुसी सारे मेरे नाल हो। लॉजी अगला मैसेज है, गुड मॉर्निंग निशा दी। गुड मॉर्निंग जी, सूरज चौहान तहसील तयोग दशक शिमला हिमाचल प्रदेश तो मैसेज आया है, कह रहे ने जी अर्ज किया है इरशाद कर देनी है जी, थोड़ा इरशाद करना बनता ना, और अर्ज किया है, हमने सोचा था उनकी याद में पिघल कर हम मोम हो जाएंगे, घर वालों ने ऐसी चप्पल मारी कि हम डायरेक्ट कोमा में सो जाएंगे। अच्छा जी, डॉक्टर ने आगे कहा दवा की नहीं इन्हें दुआओं की प्यास है। मैंने धीरे से बोला, डॉक्टर साहब ज़रा चेक करो ना फ्रिज में चेक करो। हाँ डॉक्टर साहब ज़रा चेक करो, फ्रिज में ठंडी रसमलाई और कोक का ग्लास है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज भेजन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम नू खूबसूरत ते चार चंद लगाउंदे ने तुहाडे मैसेजेस। हाँ जी, ताहीं ते कहनी आ फटाफट तो घलदे रहो अपने प्रोग्राम दे विच मैसेजेस ताकि निशा नू वेला ही ना मिले कि मैं गीत चला सकां। लो जी अगला मैसेज सुनना पएगा, सुनने आ जी कौन ने जिन्हां ने सानू प्रोग्राम दे विच रौनकां लगाउण लई मैसेज कर लिया जी।
1: दिल अपना पंजाबी मनजीत खंडूर वालों ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਪੜਾਓ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ,
1: ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗਾ ਮੁਕਤ ਸਰਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ
0: ਜੀ।
1: ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹੇ ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਆਇਆ, ਚੱਕੜ ਨੇਰੀ ਮੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕਸੂਤਾ ਪਾਇਆ, ਧੂੰਆਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਕ ਤੋਂ ਤਿਆਈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਡਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਈ।

हंस के कहे वेश बाजे तू फर्जन बोना, मैं भी तेरी सेवा उच्चे टैक्स एक लगाना, जे तू अपने नेमदार है मुर्शिद तई नवाना, अगदे बदले तैनू अखदा आना पऊ कढाउना, अगदे बदले तैनू अखदा आना पऊ कढाउना।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मांग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

मुझे भेजा था दुनिया देखने के लिए, मुझे भेजा था दुनिया देखने के लिए, लेकिन देखो मैं एक चेहरे का गुलाम बन के रह गया। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रही हूँ, दिल आज शायर है अपनी दोस्त ते होस्ट आर्जरिया दे नाल। ते जिहड़ा शेरो शायरी दा सिलसिला है, जिहड़ी महफिल है, बहुत सोहनी सजी हुई है। बहुत सारे जिहड़े साडे दोस्त ने साडे नाल जुड़े हुए ने, साडे व्हाट्सएप नंबर 9855107 9855 1010027 ते सानू भर भर के व्हाट्सएप के जरिए शेरो शायरिया कवितावां सांझियां करदे ने। अमरजीत जस्सल जो कि बठिंडा तो ने, लिखते ने कि पैरों के लड़खड़ाने पर तो सबकी नज़र रहती है, पर कंधों पर कितना बोझ है ये कोई नहीं देखता। लोहा बाजार मलीर कोटला तो राकेश कुमार जी लिखते ने कि जे मुहब्बत ना हुंदी तां गज़ल कहना, गज़ल किसने कहना सी, किचड़ दे विच पे डुल नू कमल किसने कहना सी, मुहब्बत तां खुदा दा करिश्मा है जनाब, वरना पत्थर दी दीवार नू ताजमहल किसने कहना सी। बलविंदर सराम पिंड मोर जंड सिखा हनुमागढ़ तो लिखते ने कि उनकी चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं, उनकी चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं, वो साथ भी नहीं और हम अकेले भी नहीं। तो इदा ही तुसी भी अपनी लिखिया हुई कवितावां शेरो शायरियां साडे नाल सांझियां कर सकते हो। साडा व्हाट्सएप नंबर हैगा जी 9855 1010027। तो थोड़े लिए अगली गज़ल बहुत ही प्यारी जी आवाज़ पेश कर रही हूँ, तो नाल ही नाल थोड़े शेरो शायरिया की नज़मों की उड़ीक भी कर रही हूँ।

बस अपना ही मसला सुलझाया ना गया, बस अपना ही मसला सुलझाया ना गया, वरना यूं तो कितनों के काम आए थे हम। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो दिलाज शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आरजे रिया दे नाल। ते जिहड़ी महफिल है वह सजी हुई है ते तुहाडे सारिआं नूं न्यौता दे रही है, सानूं सारिआं नूं आवाज़ दे रही है कि जिहड़े साडे लिसनर्स सानूं सुन रहे ने, गज़लां सुन रहे ने, शेरो शायरियां सुन रहे ने, इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम, वह भी शामिल होण। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ? ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9855-10-1027। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਜ਼ਮ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦਿਖਾਵੇ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਮੁਝ ਪੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, कहते हो फिक्र है मेरी, सच बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये जिहड़ी कविता सानू भेजी है मुहम्मद मुजफ्फर मुहम्मद अरमान, पिंड खुरद जिला मलेरकोटला तो। गगनप्रीत कौर जो कि टांडा तो ने लिखते ने कि महफिलें छोड़ दी हमने ख्वाबों को पाने के लिए, अपने ही शौक सुला दिए जमाने को दिखाने के लिए, लोग जिसे कहते हैं सिर चढ़ी कामयाबी की सूरत, ना जाने

ने कितने अरमान दफन है वहाँ जाने के लिए। तो बिल्कुल सच है जी, जदों कोई भी असी किसी मुकाम ते पहुँच जाने हाँ ते साडे आले दुआले वाले ना अक्सर सानू कह दिंदे ने कि वाह यू गॉट सो लकी, तुहाडी किस्मत बड़ी अच्छी है। पर वो ये नहीं देखते कि उस मुकाम तक पहुँचने दे लई किन्नी मेहनत, किन्नी रातां दी नींद, किन्ना खून पसीना वाया हुंदा, किन्ने ही सारे सैक्रीफाइसिस हुंदे ने। सो जद भी थोनू कोई इदां इदां रियलाइज़ करवावे कि ओ जे तुसी किसी मुकाम ते हो ते तुसी लकी हो, ते तुसी अपने मन दे अंदर इन्ना ज़रूर अपने आप नूं चेते कराया करो कि ये किस्मत दी गल एक हुंदी है, पर जिहड़ी तुसी सैक्रीफाइसिस कीते ने, जिहड़ी मेहनत कीती है ना उस चीज़ नूं पाउण दे लई, ओह तुहानूं अपने उस मुकाम दा असल हकदार बनाउंदी है। बसंत सिंह टेलर पिंड मेन बाज़ार पिंड चौके ज़िला बठिंडा तो लिखते हैं कि मैं किस ते करां भरोसा, हर एक दे चेहरे ते नकाब यारो, कौन अपना कौन बेगाना, औखा होया लाउणा हिसाब यारो, सीने विच कंडे बण चुभे साडे, जिस नूं समझिया असीं गुलाब यारो, मिलू प्यार दे बदले प्यार सानू, बन के रह गया ही ख्वाब यारो, पिठ पिछे निंदा करन उही जो जसल नूं मूँह ते कहन जनाब यारो। बहुत ही सोहनी कविता तुसी साडे नाल सांझी कीती है, ते इदां ही होर बहुत सारे दोस्त साडे नाल बहुत सोहनिया सोहनिया कवितावां नज़मां शेरो शायरियां सांझियां कर रहे ने। एक होर कविता है कि लिखते ने कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उस बिस्तर के पास खड़े रहना, नर्स से हर बार बोतल बदलने की मिन्नत करना, और बेहद व्यस्त डॉक्टर से हिम्मत जुटा के सिर एक बार ज़रा देख लीजिए कहना, हर रोज गिरते आंसुओं को पोंछते हुए दवाई लेके आना, चेहरे पर मुस्कान ओढ़ कर रखना, अरे कुछ नहीं है आपको, 2 दिन की बात है, आप जल्दी घर चलेंगे कहना, मरीज होना कभी कभी आसान होता है, मुश्किल होता है उनके अटेंडेंट बनना। सो इदां ही तुसी भी अपने दिल दे जो हालात ने जज्बात ने कविता नज़म शेरो शायरी दे रूप विच साडे नाल सांझे कर सकदे हो। फिलहाल जसप्रीत शर्मा होरां दी आवाज़ विच एक बहुत ही प्यारी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हां।

कुछ काम है अपनी मर्जी के, कुछ काम है अपनी मर्ज़ी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी है, फिर वक़्त बहुत ही थोड़ा है और सारे काम ज़रूरी हैं। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो, दिल आज शायर है अपनी दोस्त होस्ट आज ही रिया दे नाल। तो बिल्कुल सही क्या है किसी ने कि सारे काम ज़रूरी नहीं थे, वक्त तो बहुत ही थोड़ा है। तो जिहड़ा वक्त है ना, वो एक्चुअली बहुत ही थोड़ा हुंदा है जदों असी सोचते हैं कि

0: आपकी वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर में, स्पेशल फोन इन प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और आज रेडियो डॉक्टर स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जी हाँ श्रोताओं, आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने यह तय किया कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 1990 में पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, इस पर बातचीत की जाती है इस दिन। तो हम भी इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आप सभी में जागरूकता का एक अभियान लेकर चलेंगे। तो हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए उनसे मिलते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर ज्योत्सना सूरी।
3: नमस्कार एंड थैंक यू, आपने मुझे आज इस बहुत इम्पोर्टेंट डे पे इनवाइट किया। तो हम अपने श्रोताओं से आज बहुत सारी बातें करेंगे आज के स्पेशल डे के बारे में।
2: डॉक्टर सूरी, इस टॉपिक को कवर आप करेंगे और साथ ही श्रोताओं के जो हमारी क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके आंसर्स भी आपके पास तैयार ही रहेंगे। तो आप अपने सवाल तैयार रखिए। इस बीच हम एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का। तो चलिए पहले इस गाने का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद जो आज का सीरियस टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे।

0: ये गाना हमने सुना, बारिश जो बाहर बूंदा बांदी हो रही है या कहीं कहीं पर जोरों की बारिश भी हो रही है, हमने उसका मजा भी ले लिया इस गाने के माध्यम से। लेकिन अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रेडियो डॉक्टर में है। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और मैं हूँ सुजाता रथ। तो डॉक्टर, चीन के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। तो अगर मौजूदा हालात को देखते हुए कहें तो वर्तमान में भारत में पॉपुलेशन की क्या स्थिति है मैम?
1: सुजाता जी, हमारी 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमारा स्थापित हुआ था, एंड इट वाज द फर्स्ट जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत हेडवे किया है, बहुत हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। और आज हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन, वी स्टैंड एट अबाउट 1,040,000,000, मतलब ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग 1.5 billion। और रोज के बर्थ्स अगर देखे जाएं तो 65,000 से ऊपर पर डे बर्थ्स हो रहे हैं, और लगभग 1 से 2 बेबीज बॉर्न होते हैं एवरी 1 to 2 seconds एक बर्थ हमारे बेबी का हो रहा है। तो हमने काफी प्रोग्रेस की, जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई था, जो हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं रेगुलरली हर 5 years में होते हैं। तो अभी हमारा ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज द एवरेज नंबर जो एक शादीशुदा महिला अपनी लाइफ टाइम में उनके कितने बच्चे होंगे एवरेज, तो वो आज की डेट में 2 है, जो अभी लेटेस्ट हमारा सर्वे था 2019-21 का NFHS 5, और उससे पहले हमारा 2.2 था, उससे पहले 2.4, 3.5, मतलब प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है। तो आज हम 2 पे हैं, नेशनल एवरेज है ये, और ये जो 2 है ये एक रिप्लेसमेंट लेवल से अब नीचे हो गया है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। तो अगर हम इस पे रहें तो हमारी डेफिनेटली जनसंख्या जो है इंडिया की वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी, और आगे के जो हमारा टाइम आएगा उसमें वो धीरे धीरे कम भी हो सकती है, बट वो अभी इमीडिएट नहीं है, वो बहुत और डिकेड्स के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी। बट ये एक गुड न्यूज़ है कि हम अब 2 पे पहुंच गए हैं
0: जी। तो ये थोड़ा सा एक उत्साह बढ़ाने वाली न्यूज़ है। कुछ कॉलर्स मैम आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, देखते हैं कौन है।

0: हेलो।
1: हाँ जी बोलिए।
0: नमस्ते सुजाता मैडम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: साहब
1: जी।
0: मेरा
1: हाँ
0: हाँ जी मेरा ये कहना है कि पॉपुलेशन रोक लेंगे नहीं है ना, पहले काफी ज्यादा बड़े स्तर पर फैमिली प्लानिंग के उपाय बताए जाते थे, वो बीच में धीरे धीरे कम हो गए। और जैसे आज पॉपुलेशन डे है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है, तो कोई प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फिर बाद में लोग धीरे धीरे हो जाए। तो इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग के उपायों की जानकारी अधिक से अधिक दी जाए, और जो लोग इसमें नहीं मानते हैं उनके खिलाफ अगर दंडात्मक कार्रवाई हो सके तो की जाए, और जो अच्छी तरह मान लें तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
1: धन्यवाद, आपने हमारे साथ आप जुड़े आज इस प्रोग्राम में। और हम भी आपसे थोड़ा इस बात में तो सहमत है कि अवेयरनेस जरूर बढ़नी चाहिए, और हर ऐसा व्यक्ति जो फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहता है उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वो फैसिलिटीज लेने के लिए उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और उनको अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें उनका राइट है। एक रिप्रोडक्टिव राइट जो हम बोलते हैं, ये हर महिला और पुरुष का राइट है। बट दंडात्मक तरीके से हम शायद उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और क्योंकि परिवार नियोजन को अपनाना हम सबका एक हमारे फायदे के लिए है। तो इसमें अगर हम सबको एक ज्ञान दें, उनका फायदा होगा और उनकी प्रोग्रेस होगी, तो वो एक वॉलेंटरी वे में ही होना चाहिए और कभी भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी राय है और हमारी कंट्री की भी शुरू से यही राय है कि फोर्सफुल हम इस चीज के लिए कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक महिला और पुरुष का राइट है कि उनको कितने बच्चे होने चाहिए और वो अपने बच्चों को कैसे पालें, तो ये उनका एक रिप्रोडक्टिव राइट होता है।
2: तो मैम आपने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया। फिलहाल आपके पसंद का एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ मैम, चलिए सुनते हैं।

0: विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैं सुजाता रहा। व्हाट्सएप मैसेज है मोनू सेठ खलियापुर अमेठी से, लिखते हैं कि जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने भी और समाज में भी इस पर ध्यान दिलाया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जनसंख्या विस्फोट जो है क्यों नहीं रुक रहे।
1: तो हर चीज अपने समय लेती है। देखिए बहुत हेडवे हुआ, मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताए तो हम काफी आगे आ गए हैं, बट ये है कि अभी ये यूनिफॉर्म नहीं है। जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमने कहा एवरेज 2 पे आ गया है पूरी कंट्री के लिए, बट उसमें ये देखा गया है कि जो शहरों में रह रहे हैं उसमें तो 1.5 तक भी आ गया है, बट रूरल एरियाज में अभी भी 2.5-3 कुछ कुछ स्टेट्स में 2.5 के ऊपर है। तो वहां पे हमें काम और करना है, जहां जहां पे हमें लगता है कि ये मैसेज नहीं पहुंच रहा या उनको किसी तरीके से ये फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं है, तो उन जगहों पे हमें और आगे काम करना है और आपको इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले सालों में जरूर दिखेगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है और आई थिंक पिछले 2 decades में काफी फर्क आया है
0: जी। हेलो
2: हेलो सुजाता जी को मेरा नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार,
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: हाँ नमस्कार जी,
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी रघुविंदर जी बोलिए।
2: डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है वो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भी हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले एक नारा था हम दो हमारे दो और अब है हम दो और दो, अब 4 होने लगे हैं। फिर लड़के की चाह में लड़कियां पैदा होती रहती है, ये पुराने ख्याल कब तक चलेंगे और देश को इससे राहत कब मिलेगी, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें।
1: देखिए ये हर एक भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, एक इसमें डॉक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार नियोजन के अपनाओ उपाय और लिखो तरक्की के नए अध्याय। तो तरक्की और ये हम लिंक कर रहे हैं कि परिवार नियोजन जो करते हैं उनकी आगे जाके जरूर उनकी तरक्की भी होगी, और ये कहना कि पॉपुलेशन से हमारी कंट्री में कुछ नेगेटिव होगा, ये भी देखिए पॉपुलेशन है जनसंख्या और जनसंख्या हमारी ताकत है। हर कंट्री जिस कंट्री में लोग

0: नेगेटिव जनसंख्या हो रही है, नेगेटिव पॉपुलेशन है वो भी परेशान है, जिधर ज्यादा पॉपुलेशन है वो भी परेशान है, तो वो बैलेंस एक लाना बहुत जरूरी है और हर कंट्री को अपने डेमोग्राफिक्स के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनानी है। तो हमारी एक जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमें एजुकेट करना है, उसको जागरूक करना है, उसको अच्छी हेल्थ देनी है, शिक्षा देनी है और वो आगे इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। और हर की जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि लड़का लड़की के बारे में, ये तो एक समाज का एक कर्तव्य है, आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का, ये सबको मिलके इसको चेंज करना है।
1: जी, तो जिस तरह का सवाल इन्होंने किया मैम, इस तरह की समझ अगर हमें सभी में होगी, लोगों में होगी,
0: हाँ जी,
1: तो एजुकेशन है, आपने कहा कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें कि लड़कियों की चाह में पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लड़कों की चाह में, तो ये सब नहीं होना चाहिए, देन दे विल बी अ बैलेंस।
0: यस,
1: तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता
0: की है, रोल है,
1: की रोल एजुकेशन का। तो बात करेंगे इस मौजू पर आगे भी, लेकिन फिलहाल आपके पसंद का एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ मैम, चलिए सुनते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैं सुजाता रथ। दोस्तों आज 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने के उपायों पर इस दिन चर्चा की जाती है, लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने के कारण देश और दुनिया को जो परेशानियां जैसे इकोसिस्टम और मानवता को जो नुकसान पहुंचा है उसके प्रति लोगों को इस दिन अलर्ट किया जाता है। इस दिन लोगों में परिवार नियोजन, गरीबी, समानता, नागरिक अधिकार, मां और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाइयों के इस्तेमाल आदि जैसे कई समस्याओं पर बातचीत की जाती है और इन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो ज्योत्सना मैम, अब बात करते हैं जनसंख्या कंट्रोल के उपायों पर।
2: हाँ जी, तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास और ये उपाय दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो इन उपायों में हमारे पास जो सबसे कॉमनली अवेलेबल और एक हम बोलते हैं बास्केट अप्रोच, क्योंकि जब भी कोई दाम्पत्य जो कपल है, जो जब वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए हमारे को अप्रोच करते हैं तो हम उनको पूरी चॉइसेस देते हैं, तभी उसको हम ऑल्सो वी कॉल इट कैफेटेरिया अप्रोच या बास्केट अप्रोच। तो एक बास्केट में जैसे कई तरह के आर्टिकल्स होते हैं उसी तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो उसमें हमारे पास जैसे मेल के लिए कॉन्डोम्स होते हैं और फीमेल के लिए हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोले जाते हैं, वो होते हैं। फिर हमारे पास IUCD जो होता है, जो यूट्रस के अंदर जो डिवाइस डाला जाता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी है, मल्टी लोड है, ये होते हैं। फिर इंजेक्टेबल ये हमारे कॉन्ट्रासेप्शन, ये हमारे लेटेस्ट हमारे जो बास्केट में आने वाले ये हैं, जो मुफ्त सारे सरकारी अस्पतालों में मिलते हैं। तो एक है हमारा जो अंतरा के नाम से, ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है जो हर 3 महीने में महिला को लगता है। इसके अलावा हमारे पास और भी तरह के पिल्स हैं जो नॉन हार्मोनल पिल्स हैं, वो भी एक नया हमारा जो आया छाया, सेंट क्रोमन पिल है, छाया के नाम से अवेलेबल है। और फिर ऑफ कोर्स जिनको आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ानी, और बिल्कुल एक तो होता है स्पेसिंग मेथड। तो स्पेसिंग मेथड का मतलब है कि आप अभी बच्चा नहीं चाहते, चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हो या जिनका एक बच्चा है और वो आगे कुछ साल अभी और दूसरा बच्चा नहीं चाहते, तो वो मेथड होता है स्पेसिंग मेथड। और ये जो मैंने अभी आपको सारे उपाय बताए, ये सारे स्पेसिंग मेथड्स हैं। फिर एक है कि जिन्होंने आगे और जिनको बच्चे नहीं चाहिए, जिनके पास 2 बच्चे हैं और वो अब आगे बच्चे नहीं चाहते, तो वो हो जाता है जो हमारे लिमिट हो जाती है, अब फैमिली को हम लिमिट करना चाहते हैं, तो वो हमारे अलग तरह के मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो एक होता है हमारा ट्यूबेक्टमी, और उसको हम चाहे तो लैप्रोस्कोपिक हम स्टेरिलाइजेशन हम कर सकते हैं, और कभी कभी वो जैसे डिलीवरी के एकदम बाद होता है तो पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन महिला उसका प्रयोग कर सकती हैं, और पुरुषों के लिए NSV, तो वो एक बहुत आसान उपाय है पुरुषों के लिए जो नॉन स्कैल्पल वेजेक्टमी बोला जाता है। और वो महिलाओं का और पुरुषों का हम देखते हैं कि रेशो बहुत डिफरेंट है, मतलब जहां कि अगर पूरे हम अगर अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो जैसे 18 से 20

0: परसेंट अगर महिलाओं ने कराया तो वो इवन 1% भी पुरुष ये ऑपरेशन आगे बढ़ के नहीं कराते। तो इसके बहुत सारे कारणवश है कि कुछ मिथ्स हैं और कुछ उनको एक फियर होता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इम्पोर्टेंस हो सकती है या कमजोरी हो सकती है। बट ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ये सब मिथ्स हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं मिथ हैं, बल्कि ये बहुत उनके लिए एक बहुत इजी तरीके से उनका ऑपरेशन हो सकता है।
1: जी, तो मैम आपने बहुत ही अच्छे से समझा कर बताया बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये कितनी सुगमता से दूर दराज के गांव में भी क्या अवेलेबल है, वहां पर भी जो महिलाएं हैं पुरुष हैं वो इसका फायदा, इसका लाभ उठा पा रही हैं कि नहीं। लेकिन पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनकी बात सुन ले मैम।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: आदाब।
1: हाँ आदाब, बताइए।
2: मैं लहरपुर से आजाद अहमद आजाद लहरपुरी बोल रहा हूँ।
1: हाँ लहरपुरी साहब, बताइए क्या पूछना चाहते हैं
2: आप। पूछने की बात ये कि कुछ सवाल रह नहीं गए, इतना ज्यादा डॉक्टर साहबा ने बता दिया।
1: जी जी जी,
2: कि आप कुछ सवाल पूछने का नहीं रहा।
1: हाँ जी,
2: बस मैंने फोन मिला दिया, बात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं और वाकई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से सभी को समझा कर कहा है और लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद, धन्यवाद, आपने सुना हमारा मैसेज सुना और हम उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलते हैं।
2: आदाब, आदाब,
0: आदाब जी, आदाब।
1: तो मैम जैसा कि मैं जानना चाह रही थी कि जो बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसका लाभ क्या असल में हमारे जो ग्रामीण इलाकों में हैं, बहुत बीहड़ इलाकों में रहती हैं महिलाएं, पुरुष, परिवार, दूर दराज है, वहां तक क्या ये पहुंच पा रहा है मैम?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुजाता जी। तो अब पूरा हमारा प्रयास यही है कि ये हमारे हर महिला को ये सारे और पुरुष को भी, महिला ही क्यों, हम दोनों को ये जागरूकता देना चाहते हैं और उनको ये फैसिलिटीज देना चाहते हैं कि उनको ये सब उपाय उनको उपयुक्त हो। तो आपको भी मालूम है हमारे हेल्थ सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और फिर हमारे और भी आंगनवाड़ी भी हैं जहाँ पे ये जैसे कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूशन और पिल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होती है। आशा है, जो वर्कर्स हैं, जो आशा, ये घर घर जाकर जिनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए उनको किट्स इस तरह की बांटी जाती हैं जिसमें कि पिल्स हैं और कॉन्डोम्स हैं। तो ये सब चीज़ें और एक अभी जैसे न्यू एक प्रोग्राम कई स्टेट्स में लागू हुआ है, नई पहल, इसमें किट्स हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए स्पेशली, वो भी आशा जाके उनके घरों में देते हैं जिसमें कि कॉन्डोम्स हैं और पूरी एक उसमें ब्रोशर होता है कलरफुल वे में कि क्या क्या तरीके हैं। और आप एकदम जैसे न्यूली मैरिड कपल हैं वो एकदम परिवार नहीं बढ़ाना चाहते, वो थोड़ा स्पेसिंग वो चाहते हैं कि हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जानें। कई लोग उस समय अपनी जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है और कुछ साल का वो गैप देना चाहते हैं। तो उनको ये सारी जो जो अवेलेबल हैं वो सब उनको ज्ञान इन्फॉर्मेशन दिया जाता है थ्रू दीज किट्स।
1: तो जो और हमारी आशा और आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं वो इस तरह से ये संदेश उन तक पहुंचाती हैं कि उनमें एक विश्वास भी जगता है।
0: यस, यस।
1: और एक ये सारे स्कीम के प्रति एक पॉजिटिविटी मन में आती
0: बिल्कुल
1: है।
0: हाँ। ये बहुत ही जरूरी है पॉजिटिविटी से काम करना और उसके ऊपर एक फेथ होना सिस्टम पे, वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के सक्सेस के लिए।
1: तो समय है मैम एक म्यूजिकल ब्रेक।
0: हाँ जी जरूर, आपने सारे मेरी पसंद के गाने चला रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: ओके।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और हमारे एक्सपर्ट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, साथ में मैं सुजाता रथ। डॉक्टर सूरी एक कॉलर हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं शाहजहां उत्तराखंड देहरादून से बात कर रहा हूँ।
1: बात कीजिए डॉक्टर।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर का शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम पसंद आ रहा है।
1: थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ बताइए, अपना सवाल बताइए।
2: और मैं जानना चाहता हूँ परिवार नियोजन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा सरकार ने जारी किया है
1: परिवार नियोजन के लिए। आप उत्तराखंड

0: में रहते हैं?
1: यस मैम।
0: हाँ, तो मैम वहाँ के सरकारी अस्पताल में, जैसे कि मैम ने अभी बहुत ही विस्तार से बताया था कि सरकार की तरफ से पूरा एक स्कीम चलाई जा रही है, एक पूरा बास्केट इस लिए दिया जाता है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो हर सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये जो सुविधा है ये मिल जाएगी।
2: ये मिल जाएंगी। आप अपने जो आपके नियरेस्ट सरकारी आपके अस्पताल हैं या आपके जो भी सेंटर हैं, तो वहाँ पे आप जरूर गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर आप ये सुविधाएं ले सकते हैं जो फैमिली।
1: वो तो बात सही है मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ना, ऐसा कोई टोल फ्री
2: नंबर तो ऐसा नहीं है, आपको विजिट करके लेना पड़ेगा जो भी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं।
1: हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत जानकारी दी, तक के लिए धन्यवाद।
2: हाँ जी,
0: जो उस समय में एक व्हाट्सएप मैसेज है प्रोमिला का दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि इनका बच्चा अभी 4 महीने का है और अभी फिलहाल इसके बाद ये नहीं चाहती हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो किसी तरह के प्रेगनेंसी का डर तो नहीं है मैम?
2: हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं और पुरुष ये सोचते हैं कि जब उनका बच्चा छोटा है और दूध पीता है तो अभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर ऐसा देखा गया है कि इवन दो जब तक वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं माताएं अपने शिशु को, और उनका मासिक धर्म अभी वापस नहीं आया, तो वो एमिनोरिया बोलते हैं हम, कि अभी उनको पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ और वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं और बच्चा अभी 6 महीने की आयु से कम है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, बट ये कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है। और बहुत सारी महिलाएं जो इसी पीरियड में कंसीव कर देती हैं और उनको ये ज्ञान भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो जब तक उनको ज्ञान होता है, वो बच्चा 6 महीने का जब हिलने लगता है तो कई महिलाएं अस्पताल आती हैं कि हमने सोचा कि हम दूध पिला रहे हैं और इसीलिए पीरियड नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको और अभी बच्चा नहीं चाहिए तो आप कोई परिवार नियोजन का मेथड अपनाएं। तो इनमें पोस्टपार्टम पीरियड में जैसे हम बोलते हैं, जो एक तो होता है कि जैसे आपका तो 4 महीने का बच्चा है और अभी आप उसको पूरी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे होंगे बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय हम आपको कुछ जो हमारे ये हैं जैसे कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हम आपको ब्रेस्ट फीडिंग के समय नहीं दे सकते, बट कॉपर टी आपको कभी भी लग सकती है, इंजेक्शंस जो 3 महीने वाले आपको लग सकते हैं, और एक और मैंने आपको बताया एक नया जो हमारा एक और है छाया, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी टैबलेट है जो हफ्ते में एक बार लेना होता है। तो ये आपको सारी चीजें आपको अपने जो भी नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल गवर्नमेंट का या सेंटर, तो आप ये सारी फैसिलिटीज ले सकती हैं और ज़रूर आप कोई ना कोई मेथड अपनाएं। और बाकी भी जो श्रोता सुन रहे हैं, जब डिलीवरी के लिए आप अस्पताल जाते हैं तो एक हमारा एक प्रोग्राम है PPIUCD, जो पोस्टपार्टम पीरियड में इमीडिएटली डिलीवरी के बाद, जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, अगर बाय चांस आपका सिजेरियन भी होता है, तो वो साथ के साथ आपका कॉपर टी, जो बहुत छोटी सी एक डिवाइस है बट वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देती है, बहुत कामयाब है वो, और उसमें ये नहीं कि आपको रोज याद करके खाना है, जैसे गोली खानी है तो रोज आपको याद करना है, आप कभी कभी भूल भी सकते हैं, वो एक बार डल जाती है तो आप 10 साल के लिए निश्चिंत हैं, और अगर उससे जल्दी आपको बच्चा चाहिए आप कभी भी निकलवा सकते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि डिलीवरी के एकदम बाद अगर आप स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप ये कॉपर टी लगाएं, नहीं भी चाहते आगे बच्चा तो भी कॉपर टी लगा सकते हैं।
0: तो मैम जो उस समय ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, खास करके हमारी जो यंग माताएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हम लेंगे और मैम आज बहुत अच्छे अच्छे गाने चुन कर लाई हैं आप सभी के लिए, तो सुनते हैं जो उस समय मैम के पसंद का ये गाना।

0: हमारे श्रोताओं को समझाकर जानकारी दे रही हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो मैम आपकी एफर्ट्स के लिए बहुत सारी तारीफें आई हैं व्हाट्सएप के जरिए। कुछ एक मैं जरूर लेना चाहूंगी, सरोज बंसल अनूप कौर ने गुड़गांव से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, थैंक्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन।
1: थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अप्रिशिएटिंग
0: जी। और एक मैसेज है मैम गुड्डू फ्रॉम दिल्ली से ही हैं, इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र है 32 साल, दो बेटियां हैं एक बेटा है, हम दोनों अब बच्चा नहीं चाहते मैम, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, इसके लिए क्या उपाय है?
1: हाँ गुड्डू जी, ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका हम यही आंसर देंगे कि ऑपरेशन सिर्फ नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। और आप गुड्डू जी ये महिला हैं?
0: नहीं पुरुष
1: हैं। पुरुष हैं तो गुड्डू जी आप खुद भी परिवार नियोजन आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते ऑपरेशन जैसे आपने बोला, तो जो आपकी वाइफ हैं उनको आप कॉपर टी जैसे है, ये कॉपर टी भी एक तरह से हम इनको ना बोलते हैं लार्क मेथड, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, एक बार लगाइए और 10 साल के लिए आपको पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि कोई आपको प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। तो ये आप कॉपर टी का सेवन कर सकते हैं ऐसे में। और बाकी तरीके हैं जैसे कि मैंने आपको इंजेक्शंस बताए थे और गोलियां बताई थी, और एक और तरीका है जो कि वैसे अभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा बट ये प्राइवेटली अवेलेबल है, जैसे हम इसको जो हमारे इम्प्लांट्स हैं, तो इम्प्लांट्स हैं जो कि एक रॉड होती है जो आपके जो महिला हैं उनके ये अपर आर्म में थोड़ा सा बस नीचे जाके इम्प्लांट कर दी जाती है, और वो आपको 3 to 5 years तक, वो भी 5 years तक आपको निश्चिंत करती है आप प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल से आप ये वाला आप लगवा सकते हैं इम्प्लांट्स। और बाकी तो कॉपर टी मैं आपको राय दूंगी, वो एक तरह से बिना ऑपरेशन करे भी वो एक तरह से उसी का काम करेगी, क्योंकि बहुत लंबा उसका टाइम होता है उसका, और उसमें आपको बार बार किसी भी हॉस्पिटल में जाना नहीं है, एक बार हो गया और फिर आप निश्चिंत हैं।
0: मैम एक कॉलर है, हेलो
2: गुड आफ्टरनून डॉक्टर।
0: हाँ
1: गुड आफ्टरनून,
2: गुड आफ्टरनून गोवा।
0: यस
2: मेरे ख्याल से दो तरह का लोग होते हैं जो पॉपुलेशन के प्रमोशन करते हैं। एक तरह का एक कैटेगरी है जो इलिटरेट है, उनको पता नहीं है, गरीब है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है। और दूसरा है पढ़ा लिखा, हर मर्द को बेटा ही चाहिए, तो बेटियां बेटियां पैदा होते हैं, जब तक बेटा पैदा नहीं होता है वहाँ पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको एडुकेशन चाहिए, और जो बेटियां हैं ज्यादा उनके बीवियों को एडुकेशन चाहिए जो पॉपुलेशन ये कंट्रोल करने का, वो जो आप बताया इसी।
1: हाँ जी, आपको हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपके बहुत अच्छे व्यूज हैं। और अगर हर हमारी कंट्री में हमारे सारी जो पॉपुलेशन इस तरीके से सोचेगी जैसे आपने बोला, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बेटा और बेटी दोनों ही इक्वल हैं और हमें उनको एक ही नजरिए से देखना चाहिए।
0: तो मैम चलते चलते एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, शायद आप भी डिस्कस कर रही थी मेरे साथ, कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हमेशा हम सभी का ध्यान महिलाओं की ओर जाता है कि महिलाएं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके विपरीत पुरुषों का रोल शायद ज्यादा है महिलाओं से। तो कितने रिस्पॉन्सिबल है मैम पुरुष पॉपुलेशन को कम करने में? मैम
1: देखिए, आपको भी पता है कि वो इक्वल के भागीदार हैं, है ना, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे बोलूंगी, सुखी दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र सबने यही माना है, पुरुषों को भी बराबर की भागीदारी निभाना है, उसके बिना हम नहीं आगे प्रोग्रेस कर सकते। हर चीज महिला की जिम्मेवारी नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारी फैमिली प्लानिंग इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इट इज वेन यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, और उन बच्चों को हमें पढ़ाना लिखाना, और वो

और आज इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और बहुत अच्छे

0: उनको राइट्स उनके, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। ये हमारा है एक मैसेज आज सबके लिए कि इसी से हमारा देश प्रोग्रेस करेगा और तरक्की करके विश्व में सबसे अच्छा देश बनेगा, सबसे प्रोग्रेसिव देश बनेगा,
1: हमारी
0: स्ट्रेंथ बनेगी।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इतने अच्छे से हमको समझाकर सभी को बताने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सुजाता जी फॉर कॉलिंग मी टुडे आफ्टरनून एंड आई रियली थैंक यू एंड ऑल आर व्यूअर्स जिन्होंने इतने ध्यान से सुना, इतने सवाल पूछे और इतना अप्रिशिएट किया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर। म्यूजिक

आई विश मैं भी दकै पाँदी, पर एक सैड न्यूज़ ये हैगी है कि इस बार जिहड़े साडे साइंटिस्ट हैगे ने या साडे जिहड़े मीटियोरोलॉजिस्ट हैगे ने उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस साल जिहड़ी मानसून है वह इन्ना गरज बरज के नहीं आएगा। मतलब जिहड़ा असीं वैसे भी तुसीं सारयां ने नोटिस किया ही होना है कि जून ते जुलाई के महीने में जिद्दां गर्मी तो बाद एक राहत दी सारे नूं उम्मीद हुंदी सी क्योंकि बारिश आएगी तो राहत मिल जाएगी, तो किते ना किते इस बार ये जिहड़ी राहत है ना वह आउंदी दिख रही है पर बहुत ही थोड़ी मात्रा दे विच दिख रही है। सो इस चीज़ नूं लैके देखो असी तो मतलब असी तो मतलब मैं तो मेरी जिहड़े फ्रेंड्स ने तो जिहड़े मेरे नून वंस ने वह तो काफ़ी सैड सैड जे ने क्योंकि बारिश का इंतजार तो गर्मी तो बाद बारिश का इंतजार तो सानूं सारयां नूं ही रहिंदा है। सो चलो कोई गल नहीं, बारिश नहीं आ रही पर अज असी

0: भी फूल।
1: हम कहा इका दे तो हम कहा फूल, का दे तो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली, हो गई हमसे भूल भूल।

0: चीज
1: समझ गए हो ना?
2: हाँ जी हाँ जी,
1: क्या कहा? हाँ
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, इसे समझ गया कि ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज़ थे। ठीक है जी, ठीक है, तुम होवोगे बड़े काम की चीज़, असं तो क्यों ऐसा वैसा समझना है। साढ़े जो अगले कॉलर ने साढ़े जुड़ गए ने, तो आओ उन्होंने गलबात करते हैं आप। हैलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी?
3: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी?
3: रविंदर कुमार कैंबो बोल रहे हैं मैडम, बोल रहे हैं।
2: रविंदर जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच, की हाल चाल ने?
3: हाल चाल बहुत बढ़िया जी।
2: की करी जाने हो?
3: बस दुकान पे बैठे सी, हूं ट्राई किया ते लग गया 2-4 मिंट च।
2: हाय हाय हाय, वाह जी वाह, अगे भी ट्राई करदे हो न्यू फोन करना?
3: हां जी, जदों मतलब टाइम मिल जाए काम चो फिर कर लईदा, नहीं तो काम तो पहले नंबर पे आ।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, काम तो बिल्कुल पहले नंबर पे हुंदा है। ते गल दसो, मी पै रहा गुराया वाल के नहीं पै रहा?

0: सारे उम्मीद कर रहे होने, इंतज़ार कर रहे होने कि बारिश पएगी तो सानू गर्मी तो राहत मिल जाएगी। वो कितने ना कितने साड़ी उम्मीदा दे ना थोड़ा पानी फिरदा नज़र आ रहा है। तो वह कारण यह है कि जो सा वायुमंडल हैगा ना वो कुछ यहोजे बदलाव इस टाइम तो हो रहे हैं जिदे करके जो बारिश असी अक्सर जुलाई के महीने के वेखते हैं वह नहीं हो पा रही। तो वो जो बदलाव ने उन्होंने एक टैक्नीकल टर्म भी दी गई है जिन्होंने आप कहने एल नीनो। ये बेसिकली की होंगे है कि जोड़े भी बदल होंगे ने वायुमंडल के जिद बारिश होंगी है वो जो बदल है उन्होंने तापमान घट हो जाता है, जिदे तापमान जोड़ा है वो वध हो जाता है तो गर्मी हो जाती है जिदे करके बारिश जो है कितना कितने उदी मात्रा दे विच फर्क पै रहा है। सो साडे नाल जिहड़े अगले कॉलर ने वो भी जुड़ गए हैं तो आओ आपां उहनां नाल गलबात करते हैं तो सुनते हैं कि भाई बारिश लई लई उहनां दे की ख्याल ने। हैलो
1: हेलो रिया मैडम जी, गुड इवनिंग जी।
0: गुड इवनिंग जी।
1: और मैडम जी की हाल चाल है?
0: असीं वधिया जी, तुसीं दसो जी।
1: अपना ही वधिया मैडम जी, गर्मी तो बहुत है पर फिर भी कूलर लगे फैक्ट्री च काम कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, काम काम मैं क्या तुसीं तगड़े होके करी जाने हो गर्मी दे विच है ना?
1: बिल्कुल मैडम, अंदर बैठे हैं गर्मी लगदी जी।
0: लस्सी पीने हो के चाह पीने हो फिर काम कर दे?
1: मैडम जी हुणे ही चाह पीती 4 बजे।
0: अच्छा, लाची वाली की अदरक वाली?
1: दोनों ही सी विच मैडम।
0: दोनों ही सी, लाची ते अदरक कट्ठे ही?
1: दोनों ही मैडम।
0: ते जिदा हुण मीह नहीं पैन दिया ते मीह नूं मिस करन दे हो तुसीं कि मीह पवे ते गर्मी तो राहत मिले, थोड़ी काम तो छुट्टी मिले?
1: हाँ जी मैडम जी, मिस तो कर रहे हैं पर ये थोड़ा जिहा ना साडा वी हाथ हैगा बारिश ना आउण च।
0: ये किदा की किवें?
1: क्योंकि असीं पेड़ पौधे ला नहीं रहे ते वड्डी जन्ने पे आ, जिन्ने खेत लोकी कट कुट के उन्हां दे मतलब ना बनाई जांदे आ प्लाट, कोठियां बनी जांदियां ते ओह वातावरण थोड़ा जिहा खराब हो रहा मैडम जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। तुसीं कदे लाए नहीं वैसे पेड़ पौधे? लाने
1: मैडम जी अपने अपने घर 10 लगे जी पौधे जी।
0: अच्छा जी, केड़े केड़े? हाँ जी,
1: असि मैडम जी गुलाब के फुला का लाया है, एरोविला, अजवैन, गेंदे फूल, हाँ जी, होर भी अमरूद का भी लगा है मैडम, जामुन का भी लगा है।
0: ते नहीं छोटे होंदे वैसे कदे इदां कीता कि मीह पिया होवे ते स्कूल जाण नूं जी ना कीता होवे ते फिर भी घरदे ने कुट मार के स्कूल भेजता होवे?
1: नहीं नहीं मैडम जी, ओह आप ही कहिंदे सी अज बारिश बहुत है छुट्टी कर लो जी।
0: वाह जी, वधे छुट्टी करके की करदे सीगे फिर?
1: मैडम फिर बारिश नहाई दा जिथे पानी इकट्ठा होना उथे नहाउण लग पैना, सड़का सुड़कां जिथे इकट्ठा होना पानी।
0: अच्छा जी, ते कदे इदां नहीं सी जिदां हुण अजकल बच्चे की हुंदे ने जदों मीह च नहांदे ने ते मावां नाल ही कहिंदियां कि नहीं नहीं मीह च नहीं नहाना बेटा बुखार हो जाएगा, मतलब अजकल बच्चे जिदां सेंसिटिव हो गए ने, ते तुहाडे जमाने च सीगा कुछ इदां?
1: नहीं नहीं मैडम जी, ओह ते उस टाइम ना मैडम जी बहुत ना तित बहुत निकलदी सी मैडम उस टाइम। ते ओह असीं फिर गाचनी मल के ना पट्टी पोचन वाली गाचनी होंदी ओह मल के फिर नहाना ते फिर ओह पित सारी मर जानी।
0: वाह जी वाह, देसी देसी प्रॉब्लम्स दे देसी जड़े इलाज।
1: हाँ जी।
0: गाना दसो जी केड़ा सुनोगे?
1: गाना मैडम जी सुना दियो फिर भी नागन तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना।
0: अच्छा है, किन्नू कह रहे हो तुसी ये भी दस दियो हुण?
1: मैडम जी अपनी वाइफ नू कह रहे हैं जी।
0: अच्छा जी, वाइफ कोले ही ने?
1: नहीं नहीं, वो घर सुन रहे जी।
0: अच्छा जी, चलो बड़ा वधिया लगा जी तुहाडे नाल गलबात करके,
1: शुक्रिया रिया मैडम
0: जी। शुक्रिया जी शुक्रिया। सो इन्होंने तो अपनी वाइफ नू गाना जिहड़ा हैगा डेडीकेट कर दिता है, तो हुण जिहड़ा समा है बहुत घट रह गया, तुसीं भी जिन्नू गाना छेती छेती डेडीकेट करना है तुसीं कर दिओ साढ़े नंबर ते डायल करके। साढ़ा नंबर हैगा जी 0181 2341 174 01 8 1 2 3 4 2 1 7 4।

5 अरब का आंकड़ा पार किया। इस दिन नू 5 बिलियन डे भी कहा जाता है। इस घटना ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान इस गल वल खिंचया कि तेजी नाल वध रही आबादी भविख विच गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकती है। इस तो बाद 1989 विच यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम ने फैसला किया कि हर साल 11 जुलाई नू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाए ता जो लोगों विच आबादी नाल जुड़े मुद्दों बारे जागरूकता वधे। दोस्तों हुण गल करिए कि आबादी वधना समस्या है या ताकत। हुण सानू सारे नू पता है कि जिवें कि इंप्लॉयमेंट की इन्नी समस्या हो रही है भारत दे विच, ते सानू यही लगता है कि पॉपुलेशन वधना एक बहुत ही वड्डी समस्या है। तो दोस्तों ज़्यादा आबादी अपने आप विच समस्या नहीं हुंदी है जे लोगों नू चंगी सिख्या, वधिया सेहत सेवावां, रोज़गार ते बराबर मौका मिलन लई आबादी किसी भी देश की सब तो वड्डी ताकत बन जाती है। जो देश विच इंप्लॉयमेंट की बहुत घाट हुंदी है या असीं अपने नेचर नू सेव नहीं करते तो ओबियसली सानू यही लगेगा कि आबादी एक बहुत वड्डी समस्या है। पर जे योजनाबंदी ना होवे, यही आबादी बेरोज़गारी, गरीबी, ट्रैफिक, पोल्यूशन, पानी की कमी ते वातावरण ते दबाव का कारण बन सकती है। ते आज दी आबादी का सफ़र लगभग 1804 विच दुनिया की आबादी 1 अरब हुई, ते उस तो बाद 1927 विच 2 अरब, 1960 विच 3 अरब, ते 1974 विच 4 अरब। इस तरह ही वधदे वधदे ही 1987 विच 5 अरब, 1999 विच 6 अरब, ते 2011 विच 7 अरब तक पहुँच गई, ते 2022 विच दुनिया की आबादी ने 8 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। ये दसदा है कि पिछले कुछ दहाकियां विच आबादी बहुत ही तेज़ी नाल वध रही है। तो दोस्तों आज का जिहड़ा दिन है ना, वो सानू यही सिखा रहा है, यही दसना मैसेज देना चाह रहा है कि जिहड़ी आबादी है ना, वो समस्या उदों बनती है जदों असी अपने आले दुआले दे नेचर, इंप्लॉयमेंट या एजुकेशन का ख्याल नहीं रखते। तो साड़ी सब तो वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी की है, देश का नागरिक होने के नाते साड़ी सब तो वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी ये है कि असी इन्हां चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि जे देश विच जनसंख्या वधदी रहेगी तो एजुकेशन ते लोकी ध्यान नहीं देंगे तो ये सब तो वड्डी समस्या ही बन जाएगी।

0: हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो युवाणी ओनली ऑन 107 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते अपने दोस्त आरजे नेहा दे नाल। ते दोस्तों उम्मीद करदी हां प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे होंगे। तो इस दे नाल ही साडे अगले कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने, करदे हां उहनां दे नाल गलबात, देखदे हां ओह साडी बुझारत बुझ सकदे आ, टंग ट्विस्टर नूं रिपीट कर सकदे कि नहीं। हैलो
1: जी, नमस्कार मैम,
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। कौन गल कर रहे ने
1: जी? मैं ओमकार सिंह गल कर रहा हूं जलंधर तो।
0: हां जी ओमकार जी, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो तुसी?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम तुसी कीता यू बाणी ते आई थिंक टीम ट्विस्टर बड़े ही जबरदस्त सेगे ते उनां दे जवाब भी बड़े जबरदस्त सेगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस फिर तुसी तैयार हो अपने अगले टंग ट्विस्टर दे लई?
1: अच्छा, टंग ट्विस्टर पूछ रहे हो?
0: यस यस, टंग ट्विस्टर।
1: ओके, तो तुसी पेश करो।
0: टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके नाल है, टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा। ए तुसी तीन वारी रिपीट करना है।
1: ओके।
0: हां जी,
1: टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा, टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा, टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा।
0: वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही तरीके नाल तुसी सारे वर्ड्स बिल्कुल तरीके नाल बोले ने, ते बहुत वधिया लगा ते बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच जुड़न लई। उम्मीद करते हैं तुसी ते साडे सारे लिसनर साडा अज दा प्रोग्राम इंजॉय कीता होएगा। हाँ जी दोस्तों, ते जे तुसी भी जुड़ना चाहते हो साडे नाल साडे प्रोग्राम दे विच, ते तुसी करना कुछ नहीं, बस तुसी डायल करना है 0181 2342174 ते बस देने मेरे कुछ टंग ट्विस्टर्स नूं रिपीट करना है, ते मेरी कुछ बुझारतां दे जवाब देने हैं, ते बस उस तो बाद इस गीत तो पार मैं फिर मिलांगी थानू अपने अगले कॉलर दे नाल।

प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो लव यू जिंदगी अपनी दोस्त ते होस्ट आर जे रिया दे नाल। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच आपां गलबात वी ही कर रहे हां कि असीं अपनी कैवें जिंदगी नूं संवार सकदे हां, क्योंकि जिंदगी जिहो जी वी होवे उहनूं संवारना जिहड़ा हैगा उह साडे हथ विच ही हुंदा है। ते जिंदगी नूं कैवें संवारना है, सब तो पहले तो मैं कहनी हाँ कि भाई अज सैटरडे हैगा है, कल संडे हैगा है, तो जिहड़े लोग अज इन्हां नूं छुट्टी है, क्योंकि सैकेंड सैटरडे बहुत सारे ऑफिसिज़ दे विच, स्कूल्स दे विच, कॉलेजिज़ दे विच छुट्टी हुंदी है। तुसीं की करदे पए हो हैं घर रह के? तुसीं गड्डी चक्को या ट्रेन की टिकट्स बुक कराओ, बस दियां टिकट्स बुक कराओ, तो अपनी फैमिली दे नाल घूमन चल जाओ। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत सोहना होया पिया है, तो थोड़ी बहुती आउटिंग अपने आप दे लई ते फैमिली दे लई हमेशा

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सो अज दे इस प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच आपां सिखिया है कि किवें असीं जिंदगी नूं अपनी छोटी छोटी आदतों के नाल सोहनी बना सकते हैं, क्योंकि हालांकि जिहड़े आउटर सरकमस्टैंसिज हुंदे ने साडे हाथ विच ना होण, पर जिहड़े इंटरनल सरकमस्टैंसिज हुंदे ने, साडे जिहड़े मन दा भाव हुंदा है, वह साडे हाथ विच हमेशा हुंदा है। तो कोशिश यही करनी चाहीदी है कि जिवें इस एक मकान दे विच, मकान तो सानूं मिल जांदा है पर उन्हूं फुल बूटियां दे नाल, घर दे जीआं दे नाल, या असीं सोहनी सोहनी खुशबू दे नाल उस मकान नूं किन्ना सोहना घर बना सकते हैं। साडी जिंदगी भी इदां दी ही हुंदी है। सो ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ।

जी हाँ, अज गलबात करांगे असी प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं। फिलहाल जी फिल्मी दुनिया अज दे विच गलबात होएगी फिल्म जगत दी एक नहीं दो दो महान हस्तियां दे बारे विच, दो दो पर्सनैलिटीज़ दे बारे विच, उना दी लाइफ स्टोरी, उना दिया वधिया वधिया हिट मूवीज़ ते उना दे बारे विच कुछ इंटरेस्टिंग ते दिलचस्प गल्लां असी इस प्रोग्राम दे विच करांगे। शुरुआत करदे आं जी प्रोग्राम दी एक एदां दी शख्सियत दे नाल जिन्हां ने शुरुआत तां कीती इंडस्ट्री दे विच एदां दी कि किसे ने शायद सोचिया भी नहीं सी। एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर हिट मूवी दे के उन्हां ने कीती शुरुआत अपने फिल्मी करियर दी, ते उस तों बाद दे विच उन्हां दी इह जिहड़ी फिल्मी करियर सी, जिहड़ा इह कहिंदे ना रेल गड्डी सीगी इस करियर दी, इह किद्दां चली, दौड़ी भज्जी ते कित्थे कित्थे हॉल्ट आए। असीं गल्लबात करनी है इन्हां सारियां चीज़ां दी, ते नाल नाल उन्हां दी कुछ थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ दे बारे विच भी।

जी हाँ, ते पहला सब तो शुरुआत करांगे असी। आज दिन है जी 11 जुलाई, ते 11 जुलाई नू एक बहुत ही खास दिन है जी, बर्थडे है साडे इंडस्ट्री दे विच 80s दे चॉकलेटी बॉय कुमार गौरव जी दा। ते अज असी गलबात करनी है उना दे बारे विच, ते उना दी जड़ा फिल्मी करियर है उदे बारे च कुछ गल्लां बातां करांगे। कुमार गौरव जिन्हां दा असली नाम मनोज तुली है, ते ओ रजिंदर कुमार साहब दे बेटे ने, ते ऑडियंस उन्हां नूं सिर्फ एक स्टार दे तौर ते नहीं बल्कि एक रोमांटिक हीरो दे तौर ते जानदी है। जी हाँ, कुमार गौरव जिन्होंने जदों अपना मूवीज़ फिल्मी करियर जड़ा शुरू किया, तो उस टाइम दे विच लंबियां लाइना लग जांदियां सी। उन्हां दी पहली मूवी जदों रिलीज़ हुई, तो उस पहली मूवी ने इस तरह दियां धमालां पाईयां सारियां जगह दे उत्ते, हर कहिंदे ना नुक्कड़ चौराहे दे उत्ते गल्लां बातां होण लगियां इस नवें चॉकलेटी हीरो दियां। ते नाल नाल जिद्दां ही मूवी रिलीज़ हुई, ये मूवी का नाम सी लव स्टोरी, तो इस मूवी के रिलीज़ हुंदिया ही जी इन्हां दे पूरे स्टाइल नू कॉपी किया जाण लगा उस टाइम दे विच। जिदां कि जदों कॉलेज दे जिहड़े बच्चे सीगे, जिहड़े स्टूडेंट सी, यंगस्टर सीगे, खास करके लड़के लड़कियां, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिता कुमार गौरव जी का ये जिहड़ा स्टाइल सी।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी फिल्मी दुनिया ते असी गलबात कर रहे सी अज अपने फर्स्ट सैगमेंट दे विच कुमार गौरव साहब दी ते हुण गल करांगे एक होर खास पर्सनैलिटी दी ते किहदे बारे च अज गल करन जा रहे हां सी। दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया के विच कई कलाकार आए तो कुछ ने अपनी आवाज़ के नाल दिल जितया तो कुछ ने अपनी कलाकारी दे नाल। पर अज असी जिस शख्सियत नू याद करन जा रहे हैं उन्होंने ये दोनों काम किए जी। हाँ, उन्होंने शुरुआत की सी जी प्लेबैक सिंगर के तौर के उत्ते। उन्होंने जड़ा बॉलीवुड दे विच अपना सफ़र शुरू किया पर उन्होंने ये नाल हिंदी सिनेमा दे विच एक्टिंग भी की ते पहली सब तो मशहूर फीमेल कॉमेडियन बनन दा इतिहास रच दिता। ते तुसी गेस कर लिया होने कि पहली बॉलीवुड दी पहली फीमेल कॉमेडियन कौन सीगे जिन्होंने नाम अपने कर लिया सीगा ये टाइटल, क्योंकि असी जदों भी उन्हों दा नाम लेंदे ही ना ते साडे चेहरे दे उत्ते एक मुस्कान आ जांदी है ते उन्हां दी जिहड़ी अदाकारी है ना उहनू याद करके असी वाकई सारे जणे याद करदे हां। किसी ने बचपन दे विच बहुत छोटे हुंदे देखियां होणियां वो मूवीज़ या फिर किसी ने कुछ जवानी दे विच देखियां होणगियां, पर जिन्हां ने भी देखियां ने वो जिहड़ा नाम है ते वो जिहड़ी कलाकारी है वो उन्हां दा ही पेटेंट है मैनूं लगदा है। चलो जी, ये जड़ा हैगा ना सस्पेंस इनू दूर करदे आ। 11 जुलाई 1923 नू उत्तर प्रदेश दे अमरोहा इलाके दे विच उन्हां दा जन्म होया ते उन्हां दा नाम सी उमा देवी खत्री, जिन्हां नू दुनिया प्यार दे नाल चुन चुन बुलांदी है जी।

हां जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी होर बहुत सारे जड़े ने ओ तुहाडे वास्ते मैसेजेस तो तुहाडे पढ़ा ही पढ़ा ते नाल गाने भी प्ले करा। अगला मैसेज है जी, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म चोरी चोरी, गीत के बोल आ जा सनम, मधुर चांदनी में हम, फिल्म जाल, ते इस तो बाद दे विच गीत के बोल, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। अच्छा जी, फिल्म चोरी चोरी तो तुसी दो गाने दसे मैनू, एक अलग मूवी तो एक अलग, इदा तो नहीं चलना जी, एक ही मूवी का गाना एक बारी प्ले होना है, इदा नहीं चलना। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, दो लफ्जों की है, वाह जी वाह, दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी। ये गाना इटली में फिल्माया गया है और इस गाने में, अच्छा जी ये तो काफ़ी ज़्यादा उत्ते चला गया भाई। अच्छा, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर, फिल्म आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, ओए होए होए का टाइटल सॉन्ग तुन्ना तुन्ना, क्या बात है, किन्ना धमाकेदार गाना तुसी मैनू दस्या। पर मैनू एक गल का जवाब दियो जी, तुसी सारे जने कि इन्ने सारे गाणियां वास्ते तुसी रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो? गाना तो मैं एक ही प्ले करना है, इस करके इन्ने सारे गाणियां दी रिक्वेस्ट भेजन दी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ। ਆਦਰਨੀਯ ਉਦਘੋਸ਼ਕ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਫਿਲਮ ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਸੇ ਸਵਰ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਬੋਲ ਵੋ ਜਬ ਯਾਦ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਏ, ਨਲੇਸ਼ਵਰ ਨਗਰ ਨਰਵੇਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇ ਪੀ ਐੱਸ ਨਹਾਵਕਰ, ਨਿਰਮਲਾ ਨਹਾਵਕਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਾਵਕਰ, ਮਲਕਾਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇ ਨਾਰਾਇਣ ਇੰਗਲੇ, ਸੋਪਾਨ ਤਾਇਡੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਹਰਿਕਰ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मैसेज किया है, बहुत ही अच्छा गाना आपने मेरे को बोला है कि भाई मैं प्ले करूं, तो मैं कोशिश बिल्कुल करांगी कि मैं तुहाडे वास्ते ये सोहना जिहा गाना जिहड़ा है वह मैं प्ले जरूर करा। खैर फिलहाल अगले मैसेज वल चलते हैं, असी अगला मैसेज देखते हैं कि किदा है। अगला मैसेज है जी, दिल चाहता है सब प्रेम, नमस्कार, आप कैसे हैं जी, हम बहुत बढ़िया हैं, आप भी उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मूवी मृत्युदंड से है, कह दो एक बार सजना, और ठीक है जी, सिंगर्स उदित नारायण, अलका याग्निक जी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी, निशा तुलसी गोस्वामी और दिशा गोस्वामी, और माई रेडियो माई लाइफ, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए। जी आर पॉल ते पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो, फिल्म दो बदन एक गीत, दो बदन दा गीत, अच्छा मैं दो बदन ते एक गीत है, किदा दा गाना होया, रहा गर्दिशों में हरदम, आए हाय हाय हाय, तुसी तां बहुत ही वधिया जे गाने दी फरमाइश कीती है। फिलहाल अगला मैसेज, सुखबीर सिंह, कमलप्रीत कौर ते रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली जिला संगरूर तो, एनी सोंग, आए हाय एनी सोंग वाले तो मैं बड़े वधिया लगते हैं, जिहड़े कहिंदे ने अपनी मर्जी नाल चला दिओ, बस गाना साडा मैसेज जरूर शामिल कर लियो, नाम साडा आना चाहिए प्रोग्राम दे विच, ये तो मेरे फेवरेट होंगे ने जी लिसनर्स। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन वास्ते, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज करन वास्ते। प्रोग्राम दिल चाहता है जी की

उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में इंसान बदल जाता है। सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करूं, लेकिन आंख बंद करते ही इरादे बदल जाते हैं।

रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक। कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए।

कभी तुम पास बैठो तो ज़माना भूल जाऊँ मैं, कभी तुम पास बैठो तो ज़माना भूल जाऊँ मैं, तेरी आँखों में खोकर हर फसाना भूल जाऊँ मैं, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तू छू ले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाऊँ मैं, तो छूले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाऊं मैं।

क्या खरीदोगे या बाजार बहुत महंगा है, क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है, प्यार की जिद ना करो प्यार बहुत महंगा है। चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है, चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है।

अगर कोई पूछे कौन हूँ मैं तुम्हारी, अगर कोई पूछे कौन हूँ मैं तुम्हारी, तुम कह देना कोई रिश्ता नहीं, बस एक सुकून हूँ जो कभी पूरा नहीं मिला, एक दर्द हूँ जो किसी और से कहा नहीं, एक याद हूँ जो वक्त से भी पुरानी है, और एक अधूरी सी मोहब्बत जो आज भी तुम्हारी है, एक अधूरी सी मोहब्बत जो आज भी तुम्हारी है।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।